नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी यायो सूरा उगरे मशीवा ठे आलोमी तो या प्राणी पिखा तनी हो ना लाली जो मा जावी जैसे मुमा अस्वान को निभावी पहलू वे क्यों भी मैं मतिया